0: 노래
1: 액션래 뭐고 다 다 예쁘다 아 뭐고라 뭐고 애들아 되게 애들아 되게네 와 다니 되게 라미 되고 나비 되고 아 와데
2: लेकर इंगुरिया आगाड़ी में देख आगाड़ी में देख आस आस बेसी में पहुंची ना कैसे पहुंची जगह पत्थर रह जाओ हाँ कांदे
1: रहा आगाड़ी में बेटा देख कांदे
2: Yeah.